0: मंडू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: को
3: साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
2: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: मेघमंड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम्बा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु।

पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर तो, पहले थी भैरम पर।

0: पालू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम्बा नगर पालिका 5 सोलु।

0: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गराउ गृहस्थी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गराउ कारोबार में बिल विशुक लिने दिने गराउ कारोबार पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बढ़ाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्यादी नीति गुणस्तर एक करी मत खरीद बिक्री कराऊ वस्तु व सेवा को प्रयोग कने हानि नुकसानी भे स्थानीय प्रशासन में उजुरी कराऊ वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति नगर निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा कराऊ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता छोड़ने स्थानीय प्रशासन में उजुरी कराऊ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: सदैभरि रोजी।

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: नाबिन एयर बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुपु नगर पालिका 5

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखरिजिला को मिलन सूचना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रद्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: होंडा र खोटाङको डिक्टल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: होंडा को लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ पोखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842880300

नमूना दुक्कुंड आयल फॉर्म स्टोर हम प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थ में शुद्धता यहाँ डीजल पेट्रोल तपाईले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0385-20-43 नमुना दुपकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तरुण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमुना दुपकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई स मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-46 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सुनु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा जोरबौद सुनु।

0: पर सरकार विज्ञापन बोर्ड स्टार कलरिया तथा छोड़ाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनगत कुंडी नगर पालिक पांच सलेडी स्कूल खुंड विगत देखि ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलरिया तथा छोड़ाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब सुंद हमारा सेवा भोज संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर भोसर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट सफाई कर साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट यूनियर कंपनी को सब खाल तार पाइन सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। सीजी कंपनी को फ्रिज डी फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेभ नुहाउने गीजर गैस चिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ। एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ। हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्की पाल्छा वाल मिक्सर नई सागर बेसिन धारा कमोट पेनसेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन ये सब मरम्मत कर गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर करी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप गैस सिलिंडर गैस सिलो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री कर नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860321426 9841950 न्यू स्टार कलरिया तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलिनी सुनो
1: हाम्रो के दोस्तर पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएको त होइन सर
2: त्यही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टै जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिनकै बाबुआमालाई पक्रिन्न सर हामीलाई छाडिदिनु
2: तिनका बाबामा पक्राउ परिसक्यो ती त अब 3 महिना जेल बस्छन्
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ अब यसरी बाल विवाह गर्न दिनु सर गाउँ गर्न एकपटकलाई छोडिदिनु सर
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन बाल विवाह गराउने लौनीदेखि जन्तीसम्मलाई 1 महिना कैद हुन्छ भनेको छ अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन अदालतले गर्छ चुपै लाएर बस्नुहोस्
0: बाल विवाह नियन्त्रण सम्बन्धी नेपालको जनहितमा जारी सन्देश
4: हाम्रो मामाले भन्नुभएको उता पढ्नु घरको हजुरआमा त बोक्सिरे नि मिलेन त्यस्तो त
5: सोता तिमीहरूको के खासखुस कुरा हुँदैछ के भयो भन त
4: के होइन मिस
5: मैले सुनिसके हेर बोक्सा बोक्सी भन्ने हुँदैन यो त सामाजिक अविश्वास मात्र हो बुझ्यो कसैलाई बोक्सीको आरोप लाउनु कुट्नु पिट्नु पीड़ा दिनु वा गाली बेचिती गर्नु हुँदैन त्यस्तो कार्य सामाजिक अपराध हो बोक्सीको आरोप लाउने कुटपिट गर्ने तथा पीड़ा दिनेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1,00,000 रूपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्ग भङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ यो कुरा तिनीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि भन्नु है
6: बोक्सी अन्धविश्वास हो बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं समाजलाई सभ्य बनाऊ

0: 인터넷 반쪽만 아니게 맥힌이한 물과 오래 맥힌 아이는 조사 우수가하는 인원 배답다 맥힌이라고 포구 맥힌아 드가스 단계 벤차 앞으로 초보가 맥힌아 드가스 벤차 벤고맨 벤벤차오 깨끗하고
1: दीदी आज बोलिए उसे मैंने क्या भागो छिटो घर पर आऊंगा एक ही बस में रुचान होन्चा दुकान तो पने जाने भागो सा पहला खूब पानी मांचे और ये किताबें लेने मन में मैं पहला तो तीस्तु मांचे होने की बाई चता दुख गरे रकमा को पैसा बैंक में अलवली जमा कर दे थी अस्ति घर को लागे के समय मेरे किन्नु पड़े भंडार में चालने का को पैसे नहीं सेना सानो सानो कुराना किस किस मात्री गर्मी में से घर बारे डिग्री में जस्तो को बोल सके लोग ना दीदी संभव देने करो मैं ये तो लागू से क्यों करता मैं बिशन जस्तो लक्ष्य चता को पैसे लागू से तो भाई की भाई को तीन लाइक मुझे की बना तो
2: खाले दीदी जी बोलो साथी ले गांव के खाने जबरदस्ती करे मेरे को मैं मन नहीं सकी ना रखाने तीस पैसे बिस्तारे बारी मुझे लाओ और ये तो लौट ना गया था छाप नहीं सकी ना और ये पूरी गार भी ना कुछ
1: गार सारे मेरे किसी था सी ना अभी खुद को ये सब तो छानो दोसा तीनों तो हम लोग सहारे हो क्यों इसे रे बर्बाद होने तीन गांव देखो समझे तो हम लोग आम बुलाने सुनार सा बनाने गए थे जी प्रतिष्ठा छुट्टी सा इसको संरक्षक तीनों तंग हुआ
2: मुझे दीदी धन्यवाद अब मैं सभी सहारे रहूं एक असल नागरिक बनने प्रयास करने से मेरे सेवक दल पर मैं धीरे ही दुख दिए किसी ने मेरे सभी ठीक परिवार हो मैं माफ करो मैं सुधरने में कभी नहीं
1: बारिश में लॉस चीजें डगरी दुबई से तुलाने वस्तु या पदार्थ नागु पदार्थ वा नागु औषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागु पदार्थ स्वस्थ शरीर को लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनेर परिभाषित गरेको छ यस्ता पदार्थले बारिश को तीव्र स्थायी प्रणाली में प्रभाव पार्नु का साथै उसको धारणा सुचारुता परिवर्तन ल्याउँदछ त्यसैले नागु औषधको प्रयोग उसार प्रसार रोगप्रभाव जोड़ दिन स्वस्थ जीवन सभ्य सदस दीर्भादमा हाती बालो लागू औषध विकास समाज दीर्भादका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुलु खगु र सुलु एसिडको संयुक्त प्रयासमा जीवहितमा जारी सन्देश यौन हिंसाबाट बचाउ र बचाउ यौनसम्म हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबालिका यौनसम्म हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाइ परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं बालबालिकाको

0: बोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 6 PM
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साथमा डिजिटल कलरला तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुर्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

रंबर को मिले भाई रंबर को मिले भाई रंबर को मिले भाई रंबर को मिले भाई रंबर को मिले भाई रंबर को मिले भाई रंबर को मिले

स्वर्ग माते धरी मेरे की मेरी स्वर्ग माते धरी रूप रंग से कोमल अंग क्या ढंग मैले भैर मरा मैले भैर मरा मैले भैर मरा मैले भैर मरा मैले भैर मैले भैर मरा मैले भैर मरा जंगल को सुना घर आतंक।

0: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चुकिया
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: बीएसएक्स तथा नयाँ भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: भण्डारा खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखल ढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होम मल्टीपर्पज सर्भिस टाली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गुरुमारी भिजन ओखल ढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852588002222 र 9842380300

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू